0: जी सर, डिस्पैचर। जी
1: श्री,
2: एट फॉर एट डिस्पैच माय सेल्फ 852 बैक जॉब।
1: Coffee back at the jail. Bertrand.